0: ये मंदिर अच्छे है ना?
1: हाँ जी, मंदिर बहुत सुंदर है ना?
2: हम आपके रेनकोट फैमिली वर्दरा।
1: नमस्ते।
2: बिस्ते।
1: इस मंदिर का पंडित कौन है?
2: कौन है सामा? अब पंडित का मतलब कोयल के बेलियों पाग।
1: नहीं बेटा।
2: बेटा एंग मात्र रान का। ये ला मासा चमरना। अब उन पोंगले ही पुड़ियों ने बोटे कलचु प्राण के माँ।
0: वो कौन है?
2: यारे। अबरा। अबरे।
3: ए नलर नलर। ना मरे पुड़ियों की बेटू नर रहे।
2: वेणुशास्त्री।
0: अच्छा वेणुशास्त्री।
2: आमा आमा।
1: इस बच्ची का बर्थडे है। पंडित चाहिए। पूजा कराना है। पूजा
2: पूजा कराना है। चल रहे तिरुनागर से உன்ன தேடி ஒரு இந்தி ஃபேமிலி வந்திருக்கு. உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணுமா? வா. எம்கா மாணிக்கு இன்னைக்கு இருக்கு உனக்கு.
3: என்ன?
2: உன்கிட்ட ஏதோ பேசணுமா?
1: நமஸ்தே.
0: நமஸ்தே.
1: ஹம் சவுத் இந்தியா டூர் பண்ண நிக்கலே ஹே.
2: மாட்டிக்கிட்டியா? துவச்ச கையோட வந்தேன். நீ இப்படித்தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க. நான் கோயில் பேசு.
1: இஸ் பச்சி கா ஜன்மதின் ஹே. तुम मंदिर से बोला पूजा करवा ले.
3: अच्छा, आप हमारे टेंपल में आए हैं. बहुत खुश हुआ.
1: आप अच्छी तरह हिंदी बोलते हैं.
3: हम हिंदी तो जानते ही हैं. अच्छा बेटी, तेरी जन्मदिन है. क्या नाम तेरा?
1: मुस्कान.
3: मुस्कान बहुत प्यारी नाम है. अच्छा बेटी की नक्षत्र क्या है?
4: तारीस पूसम.
3: ओ पूसम, वेरी गुड स्टार. शी विल बिकम वेरी बिग हीरोइन. तू तो ऐश्वर्या राय बन जाएगी.
4: बेटा, व्हाट्स द नेम ऑफ द टेंपल?
3: ये तो साक्षीनाथ टेंपल है.
4: हु इज द मेन गॉड?
3: लॉर्ड शिवा.
4: या अच्छा अच्छा
3: अच्छा, चलिए पूजा करवा देंगे. ए, वहाँ क्या देख रहा है? काम कर, साफ कर, मंदिर को साफ कर, बेल मार बेल. चलिए आप चलिए.
2: इल्ला मुली बेस रहा.
3: क्या रिवाला? इवंग वड़नाटल अंदर काम है. ये मंदिर का बड़ा पंडित है वेणु शास्त्री जी.
0: वेणु शास्त्री का?
3: हाँ जी.
1: ये लड़का कौन है?
3: ये हमारा मंदिर का बेल बॉय है.
1: बेल बॉय?
3: हाँ जी.
1: ये तो बैड बॉय है.
5: इन्हें पतिया बाल्टे दो सुली रखा है.
3: आइए पूजा करेंगे.
2: बैड बॉय
5: அதாவது இந்த உலகத்திலேயே ஒன்ன மாதிரி அயோக்கிய பைய கிடையாது.